0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with the ICAR National Research Center on Equines, NRCE Hisar, has invited applications for administrative posts including lower division clerk, 2 vacancies, and multitasking staff, 11 vacancies, on deputation or permanent absorption basis. Eligible candidates must be from ICAR institutes or other government organizations with required service eligibility and administrative experience. The posts involve clerical, office support, and institutional administrative duties. Complete eligibility conditions, application format, and terms available on the official website at www.nrce.gov.in. I repeat the website, it is www.nrce.gov.in. The Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, Government of India, has invited applications for the post of an Assistant Director, Law, on deputation, including short-term contract basis, from eligible officers of central, state governments, union territories, PSUs, universities, and statutory autonomous bodies. The post requires legal experience in relevant service cadre and pay and eligibility details available on the Academy's website. Applications must be submitted through proper channel as per the prescribed format mentioned in the notification. Kindly visit the website for the details, that is at www.svpnpa.gov.in/vacancies. I repeat the website. It is www.svpnpa.gov.in/vacancies. The National Commission for Minorities, NCM, Government of India, New Delhi, has invited applications for one post of librarian and information assistant on deputation basis from officers of the central government. Eligible candidates must submit their applications through proper channel along with their APARs of the last 5 years, vigilance clearance, integrity certificate, and penalty statement within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Details and application format is available on the website, that is at www.ncm.nic.in. The National Commission for Minorities, New Delhi, Block 14, CGO Complex, Lodi Road, invites applications for filling up 2 posts of upper division clerk on deputation basis from eligible central government officers. Applications along with integrity certificate, vigilance clearance, ACRs and APARs for the last 5 years and penalty statement must be sent through proper channel within 60 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News. Details and application format is available on the website, that is at www.ncm.nic.in. The applications should include the email address and mobile number for communication. Andaman and Nicobar Command Headquarters, Sri Vijayapuram, invites applications by absorption through proper channel for Group C post of Stenographer Grade 2, 4 vacancies, Lower Division Clerk 5, and Multitasking Staff 1. These posts are meant for eligible defense civilian personnel working in equivalent or higher grades. Pay levels are Level 4 and Level 2 and Level 1 as per the 7th CPC. Selection will be on merit basis only with no interview, followed by document verification, medical examination and other formalities as per Government of India rules. The maximum age limit is 58 years as on the closing date of the application. Applications must be submitted in the prescribed format through registered speed post to Office in Charge, Civilian Recruitment Cell, Naval Ship Repair Yard, PO, Haddu, Sri Vijayapuram, 744102. Incomplete or late applications will be rejected. For details, kindly visit the official website at www.andamannicobar.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर वास्तुकला के एक पद के लिए आवेदन। ऑनलाइन आवेदन 24 अप्रैल 2026 से उपलब्ध हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है 18 मई 2026, जबकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख है 25 मई 2026। शैक्षिक योग्यता, पात्रता, वेतन इत्यादि सभी बातों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iust.ac.in। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अपर निदेशक एक पद, संयुक्त निदेशक व्यावहारिक प्रशिक्षण एक पद, उपनिदेशक अर्थशास्त्र और योजना एक पद तथा सहायक निदेशक कार्यालय प्रबंधन एक पद। पात्रता शर्तों के विवरण और निर्धारित प्रोफॉर्मा जिस पर आवेदन भेजे जाने चाहिए देखने के लिए जाइए इस वेबसाइट पर www.istm.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। लीड कंसल्टेंट एक पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए NDMA का रोजगार पोर्टल ndma.gov.in। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान प्रशासनिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता मानदंड, नियम शर्तों और रिक्ति परिपत्र के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.niesbud.nic.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद हिंदी प्रशिक्षक के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं तथा अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.svpnpa.gov.in।

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा कश्मीर आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर वास्तुकला के एक पद के लिए आवेदन। ऑनलाइन आवेदन 24 अप्रैल 2026 से उपलब्ध हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है 18 मई 2026, जबकि आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तारीख है 25 मई 2026। शैक्षिक योग्यता, पात्रता, वेतन इत्यादि सभी बातों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iust.ac.in। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। अपर निदेशक एक पद, संयुक्त निदेशक व्यावहारिक प्रशिक्षण एक पद, उपनिदेशक अर्थशास्त्र और योजना एक पद तथा सहायक निदेशक कार्यालय प्रबंधन एक पद। पात्रता शर्तों के विवरण और निर्धारित प्रोफॉर्मा जिस पर आवेदन भेजे जाने चाहिए देखने के लिए जाइए इस वेबसाइट पर www.istm.gov.in। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। लीड कंसल्टेंट एक पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए NDMA का रोजगार पोर्टल ndma.gov.in। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान प्रशासनिक अधिकारी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पात्रता मानदंड, नियम, शर्तों और रिक्ति परिपत्र के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.niesbud.nic.in। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद हिंदी प्रशिक्षक के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद के लिए वेतन, आवश्यक योग्यताएं तथा अन्य पात्रता मानदंड और आवेदन प्रपत्र की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.svpnpa.gov.in। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक आयुक्त मत्स्य दो पद। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। आवेदन भेजने का पता है अवर सचिव प्रशासन प्रथम तल चंद्रलोक भवन 36 जनपद नई दिल्ली 110001। विस्तृत पात्रता मानदंड जैसे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बायोडाटा प्रारूप आदि के लिए अभ्यर्थियों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.dof.gov.in देखने की सलाह दी जाती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन कुल रिक्तियां 9175, पुरुष 9996 और महिला 79 रिक्तियां। सिपाही पायनियर की 20 रिक्तियां उपलब्ध हैं जो पुरुषों के लिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं।
1: हाय हेलो, मीर विंटनर मिट्स कम्युनिटी रेडियो 90.8 జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం JNTEAకి అనుబంధంగా ఇన్నాళ్లు స్వయం పాలిత అటానమస్ స్థితిలో ఉన్న మదనపల్లె ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ MITS ఇప్పుడు మరొక విశిష్టతను సాధించింది. మిట్స్ను భారత ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ UGC డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీగా గుర్తించింది. ఇది విద్యారంగంలో మిట్స్ సాధించిన గొప్ప విజయానికి నిదర్శనం. ఇది మదనపల్లె ప్రాంతానికే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్కే గర్వకారణం. విద్యా ప్రమాణాల్లో అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న మిట్స్కు ఈ అత్యున్నత విద్యా పురస్కారం అభినందనీయం. మిట్స్ డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ, ఇది ఉన్నత విజ్ఞాన మార్గంలో ముందడుగు. వినండి, వినిపించండి, ఉంటే ఉండండి, ఆనందించండి. మిట్స్ కమ్యూనిటీ రేడియో 90.8.